0: जिगी को भी एडेड पिक्चर दावत ब्यूटी फुल गिद गदा हा
1: वे मचाग मो मदला पा सा एडिट चूरा मो
0: अगाय सलिग गलंग या अनु या इमो सीक्रेट तो गुआपा का या हाउ
1: आई सेम्प्रे BTX ब्यूटी सोप
2: BTX ब्यूटी सोप हिमो सा गुआवा लीफ एक्सट्रैक्ट मद्रेंडि काकाओ लीफ एक्सट्रैक्ट पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट कग वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑल नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल नगाहातग प्रोटेक्शन batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulik sa pagtap